0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shut up.

Peace.

Evening.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

捨てた。

जिस पाप

tonight.

सारे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो हो नहीं है, पहले से पता है ये होना, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना, करना है, करना है, कर सकेंगे, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? वो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चुराने का नया नया जन्म हुआ। नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होते हैं? तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मर रही है क्या? ब्रह्मांड जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्रह्मांडों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष बना रहे हो ना, कराते हो मुक्ति वर्ष है? मुक्ति वर्ष है 99 में आना, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथी लाओ ताली नहीं बजाना। अच्छा अच्छा अच्छा सभी हाथ उठा रहे। अच्छा देखो हाथी लाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो। जाता है। युक्ति युक्त बोल, साधारण बोल भी Sarva Kasa

समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट Yeah.
एक खजाने का गौरव और शक्ति से संबंध जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी ये गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी इशारा दे रही।

Savami. Sabu Vareti. Chote Bache Bia. Teachers Bia. वाले भी है, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अरिजीत थी, तीना बच्चे हमको कब चांस मिलेगा मिलने। तो अच्छा हुआ सर्व वैरायटी का गुलदस्ता बाप के सामने है। और बच्चे हाथ उठाओ, जो बच्चे आए वो हाथ उठाओ। अच्छी तरह से हाथ लाओ, दिखाई दे। अच्छे अभी नीचे करो, नीचे नीचे करो। बच्चों से तो बड़ों का प्यार होता ही है, तो बाप से भी बच्चों का प्यार है। और सभी बच्चे आज के ब्राह्मण है, कल के क्या बनेंगे बोलो बच्चे, कल क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। अच्छा, कौन सा देवता बनेंगे

0: अच्छा बच्चों से रौनक होती है। तो आपकी रौनक को देख के सभी खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे ब्रह्मांड आत्मा है। बच्चे तो जो परों का भाग्य है ना, वो बच्चों का भी भाग्य है। इसलिए बाप के साथ को कभी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, स्वरूप

0: मन सा जय वाचा जय कर्मणा जय समन संपरक हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे इसको कहा जाता है
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे कभी कभी

बच्चों का ही तो गायन है, हर कलप की है, तभी गायन है। क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरे कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो, मन में जो संकल्प करने जाओ, जितना समय वो संकल्प करने जाओ, वो बंधा हुआ है। योग मेरा is

0: Häuschen.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में सत में मिटने। नौकरी नौकरी करनी भी पड़ती, तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को, तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, थोड़ा ही हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल। सचमुच कोई कारण है, कईयों की सरकमस्टेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार, इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारियां चतुर होती है, भोली भाली नहीं होती। इसीलिए कुमारियां अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे, सिर्फ नौकरी नहीं स्व उन्नति में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे, तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किटकिट वाले नहीं बनना। योग्य टीचर क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेते लेकिन सेंटर पर जाती है कोई प्रॉब्लम हो सबसे अपने को साथी बनाने में। निर्विघ्न तू तो बहुत हैंड्स बन सकती है, अभी हैंड्स की कमी है। बाप दादा सभी को कह रहे हैं, कुमारियों को मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न। फिर इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए। पाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाए। लेकिन ब्राह्मण जीवन में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कर्नाटक में बाप दादा ने देखा है कि फर्स क्वालिटी बन सकते जितने फर्स क्वालिटी भले तो चार स्थान और भी है उसकी बात नहीं करते, लेकिन कर्नाटक के धरनी से फारिस बहुत निकल सकते। ताली नहीं सब बजाना, निकाल के दिखाना है। नजर पड़ती है लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी है। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते हैं। बाप दादा को कोने कोने में याद आते हैं। यज्ञ कर्नाटक के वारिस चला सकते हैं। क्या समझा? अभी निकालना और बहुत सहज निकल सकते, सिर्फ अटेंशन नहीं दिया, जनरल सेवा में लग गए, पर्सनल सेवा।

सेवा का चमत्कार वारस निकाल सुंदर पालना चाहिए। उठाओ पान का बीरा उठाओ, दादी को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। आज देखेंगे, 6 मास में देखेंगे। क्या कहा? पहले आप निकालो, दादियां आएंगी, कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ, आएंगी। जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस निकल सको जाना। टीचर्स वारिस क्वालिटी कैसे निकाली जाती?

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हो नहीं है। जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं लाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा लाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं कहते हैं ज्ञान योग क्या, बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, कहेंगे ज्ञान यूज करते हो सेवा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: और बाप को भी

diyebilirdi. Lakin ya hareket edilse bu çıldırmak olur.

आते ही हर कर्म करते याद रहते।

देखो जेकर काम काज करते भी याद किसकी है, कॉपी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है बाप के दिल में मैं अब मेरे दिल में बाप। ऐसे है ना, हाथ उठाओ, ऐसे पक्का है वैसे कहते काम काज करते लेकिन यहाँ

0: और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे। ये संबंध संगम युग की सौगात।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल दुनिया वाले 200 अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होते। ऐसे समझे के हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, इससे नहीं चलो। एक तो को देख करके भीखा भी करती है, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते है ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए, रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे पीछे दिखाई भी के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है। भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन बीच डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा के हमेशा के लिए प्राण लवबोध का फल खत्म हो जाए तो अलब काल के शांत मान नाम के लिए कभी नहीं करूं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे, जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय

Geçerdi. Abi. Same. Same pone que nadese. संकल्प से बोल से

ऐसे निवारण नहीं होते तो बाप दादा संकल्प तक सिर्फ बोलने तक नहीं लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को विश्व परिवर्तन

अभिमुक्ति चाहते तो शांति से सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते। और मुक्ति दाता कौन? पाप के साथ आप बच्चे

चर्चित चित्रों से आज तक क्या बात।

Porte. Take. So.

Yogi celatih.

scholarship.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश कर।

座ろう。

0: जो रावण का खजाना है ये पाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार
1: सोचो, क्या ये मेरा है?

certeza.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो, बहाने बाजी आलस अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत संकल्प स्वरूप में सभी बैठ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sí.

a pee-pee.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

0: Siento.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख, पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है। लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए अचानक के खेल होने कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं कि समय थोड़ा और जाएगा ना तो वैराग तो होगा, तो वैराग के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने कह दिए कि
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है
4: आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
3: कैसे आपकी आगे?
2: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
4: सोचते हो,
5: सोचते हो,
2: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है किसकी।

hace. Chip it.

0: परम में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तो किसका है, पैसा। पैसे का मैं तो है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना। अच्छा, दूसरी बिंदी लगाओ सौ हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल। और करण करावनार भी बिंदु है, तो सर्व तरफ किसका पैदा हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो, और विस्तार में नहीं जाओ, याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये पुरुषार्थ। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सीखी लते बच्चे। चाहिए, लेकिन उनों को भी वाणी और वत्सल

Jimmy Watt.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। किस बात की है तो ये दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी is

0: want to stop. Sikar me. Lagane ka. Baar baar. Abhyas karo. Abhi. Fast divar pusharat karo. Abhi dhila dhala pusharat. सफलता नहीं दिला सके।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवादारी ग्रुप देखने में आता है, सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो अमरना एक कार्ड जमा के रखो जिसमें ये इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो तो, और आगे शफा चाहते हो तो ये एड्रेसेस है जहाँ आप रहते हो वहाँ की एड्रेस हो सेंटर की, यहाँ जाके अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते, जब पर्चा लिख के देते हो ये दवाई लेना तो पर्चा देने के समय ये कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई कोई को तीर लग जाए क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है, एक प्रकृति के तरफ से टेंशन, परिवार के तरफ से टेंशन और अपने मन के तरफ से भी टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई ये है, ऐसी कुछ उसको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा, आपके सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं करते है वो करो। डबल डॉक्टर हो ना, सिंगल तो रही हो, डबल डॉक्टर है तो डबल सेवा। जब पेशेंट आती है आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहते हैं ये चीज नहीं खानी है तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है, जो भी आवे उनको समय मुकरर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा विधि बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुला के और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो तो क्या होगा, आपकी सेवा बढ़ती जाए। संदेश देना वो और बात है, संदेश से खुश होते हैं, लेकिन राजयोगी नहीं बनते हैं। जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकते। जिसको कोई भी अनुभव होता है वो छोड़ नहीं सकते। बाकी काम तो अच्छा है, किसके दुख को दूर करना, कार्य तो बहुत अच्छा कर, लेकिन सदा के लिए नहीं कर। दवाई खाएं बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। फायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रही है, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाए। इतने सब फायदा और फायदा उठाने वाले ही है। आपका निमित्त भाव औरों को भी सहयोग देगा। बार बार रियलाइज करना, दिल से रियलाइज करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ना को 21 जन्म के लिए ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाजी हाजी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने अथॉरिटी बाप द्वारा मिली हुई है। पहले कोई भी संकल्प I'm

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं दे। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सपने में बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता, हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Prince Valerby.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Say.

0: Cuman be Athena dia badal jaye nahi kare ye sao wo sikya se nahi hoga lekin samman to to jo man mein sankalp rehta hai ye ho
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, क्या करेगा, बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। रोज आपको अमृत वेले अपने पांव में समा दे, बड़ी बड़ी बड़ी आपको महसूस साथ साथ अमृत तो बाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेंगे। जैसे चित्रों में छत्र छाया बन जाए। करके देखो क्यों कर ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पहले वारी आई हो तो कमाल करो, क्या कमाल करो, पहले नंबर का पुरस्कार से फास्ट और फास्ट होके दिखाओ। हो सकता है कोई रतन ऐसे भी निकलने हैं, सभी को दीवार पुरस्कार आने से ही साधारण पुरस्कार नहीं, दीवार पुरस्कार करो, करना ही नहीं है ये दृढ़।

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Straight up, man.

switch.

Joker killed.

Rica Reyes.

So

नहीं कर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे जैसे पंप फाट डालते हैं ना, आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक पंप लगाओ, एटम पंप नहीं, आत्म पंप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप भी जानते हो और आप कोई इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में पाप रहते और बाप के दिल में अमृत। जानते हो कि ये परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है, हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता है। अगर सदा समय का मैं तो याद रहे इमर्ज रहे और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं लेकिन साधारण ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते।

जमा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

y bananas, ahí vine.

Bom dia.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव सुदैव किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा के तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर तो वो हुआ मतलब करें। सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देवभान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही दे अपमान वादी के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगा पार्टी से होता है और कोई का लगाओ गुरों से भी होता है। विशिष्टता से भी होता है। लेकिन विशिष्टता वा कौन देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितने भी बड़ी हो लेकिन लेवता है बाप से। बाप से लिया है, अपना नहीं है। बाप ने दिया तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो।

Silly girl. Ke swarth ka remne kai bachche se nas nakre dikhate unka swarth aur kahenge nahi mujhe rem padte aur kuch nahi kuch bhi nahi hai sirf लेकिन जेकर निस्वार्थ रैम है लगाव मुक्त रैम है कोई अलपकाल की कारण तो रैम नहीं है फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना बहुत अच्छा है ना इसीलिए थोड़ा थोड़ा छुट्टी नहीं है थोड़े की छुट्टी नहीं Okay.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो धन से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

second में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो, जब ये अभ्यास होगा, बार बार का अभ्यास, I'm sorry.

0: चमा तंपन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना, तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते। इसलिए ऐसे नहीं रो रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो पापा तो मदद दिए, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत पहले बच्ची की हिम्मत फिर पापा। अक्षर याद नहीं करो, बाबा मदद कर रहे हैं, लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद कर।

0: आराम से थक कर के बैठ जाओ और कहो पापा दाल रोटी खिले।
1: Name money.

0: Sancho's father, Kamat Makakarong, Kachang Ikarong Makakarong, and Subi Matwaleo, Imate.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करण हार बन बाप सम्मान न्यारे और प्यारे, बाप सम्मान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को सम्मान बनाना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Disturbing.

bitch.

Algo.

cosa faltava ora d'mano? Chi ho capito che cosa faltava?

up, man?

सफल।

शीशे में भी देखो।

0: shit, man.
1: कोई फसीर से राय लेने की आवश्यकता

sub şıktya. Vişeş darım sata. Raj sata. Donoy vişeş. Skip.

0: जन्म में आपकी चरम मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न तो इस समय के सफलता का प्रलाप स्वतः प्राप्त हो जाती, इसलिए चेक करो खजाने मिले खजानों से संपन्न हुए लेकिन स्वप्रत व विश्वप्रत कितना सफल किया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना। गेट बंद, गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना। गाडरेज का नहीं गाट का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का वो मांग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क समन द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Mr. Tarts, उसके ऊपर अटेंशन खिंचवा नहीं।

छोटे छोटे फिर संकल्प है, लेकिन कभी भी तो का समय पर दे सकते, इसलिए फियरत को भी कब करूं, टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे, हाथ उठाओ। तो बाप दादा यही सौगात पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से की जाती है। तो बाबा

再见。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वैसे तो

Chiaro.

Amazing.

coucher.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से दूर नहीं रह सकते। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश है, मुबारक भी देते हैं कि अभी हर एक समझे कि मैं इस
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Son.

ശ്രേഷ്ഠ പ്രാലംബത്ത് ചമക്കകത്ത് Awesome.

persuaded. See what were. Psst.

خوش.

Pensarva Casanoko. Chamakarniki. Chabier.

Chapi ke 16.

Chamito, ¿eh?

संकल्प नहीं चलेगा। होगा या नहीं होगा,

Ciao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: उसके

0: ஜெய் வாணிக்கு சேவா
1: और चलन द्वारा आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, जब

0: अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूं, ये साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: कुछ हो नहीं। इसलिए पाप की शुभाशय कि हर एक बच्चा इस फर्श की मुबारक है और आगे फर्श की भी मुबारक है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आज बाप दादा।

മുന്നോട്ട് കാണ. So

Che citrome. Sada. Double touch. Toi pour me. Kaira.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

父亲。

Up.

Trick or Treat.

सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बच्चा चमक।

muito sede. जीवन

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

Red Pacha. Us.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मणों का काम क्या है? शोक लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, बाप की महिमा की ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना, सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जानबूझ के सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं? बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है। इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना? युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मना

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देंगे। सुना सभी ने ध्यान से, तो नहीं कानों खोल के सुना।

Salve. Sleist. Bye.

रुमाई करती है।

por sí que tía. Shiva Vanshi Brahma.

Sick.

Okay.

people.

सवेरे दौड़ते से

Luci a nome.

Isso parece.

किसी भी प्रकार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yeah.

味しい。

0: பரம்தாம்.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jessica.

begin.

ojos y enviar tu boca. Sigh.

0: is ano ba ako? Practical me lao.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन सुन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sunscreen.

Quiet.

生活。

0: जाए। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

बापके दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

खुशी की झलक। स्पष्ट दिखाई दे रही, पाप भी दिल में यही गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह, और पाप भी जो दिल

Pap Kajikit Papapapa Pachungabi Jikit Papapapa Arar Kisikil Me Fafa Kitchen स्पष्ट दिखाई दे रहे, कोई गीत के रूप में, कोई दिल की आवाज के रूप में, ये नैनो द्वारा अपने दिल का गीत गाते हुए थे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

想必就被爹on sub go 在 TV 面的个人在呀变得变得 stand but 被爹我比 TV 面的个人Okay.

0: इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पुरुषा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थ ही बढ़ना ही है। समय की पुकार तीव्र पुरुषार्थ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध आत्माओं की

बहुत गिलानी होती कहने वाले यही कहती है, देख लिया क्या नहीं तो आत्मा बच्चों Yep.

0: रूप भी है, वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसी समझती है, वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने की छूटी नहीं दी है। ला उठाने की छूटी है दी है कोई मुरली में कहा है क्या? ला भले उठाओ, क्रोध नहीं करो। ला उठाने वाले अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्मा ही है उनको भी ला उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला उठाते नहीं, कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो ला को बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। इतनी छुट्टी है निमित्त बनने वालों को, सबको नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Thank you.

Síganme. La guerra. Vaya. A mí. Sarete.

0: एक सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि यहां तो वायुमंडल भी है लेकिन अपने अपने स्थान में रहते। सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास कर क्योंकि बाप दादा ने बता दिया जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान पे रिपोर्ट टीचर को लिख के देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है सभी के क्लासेस में ये होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्तियों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं है। इस जन्म का कनेक्शन तो बाप दादा यही चाहते हैं, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। जैसे बाप के तीन रूप हैं, ऐसे आपके भी तीन रूप हैं। ब्रह्मन फरिश्ता और देवता, इन तीन रूपों में इसलिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Luciano.

força.

Vicious. Guardian. Shea. Que quise vipercarse. Coy. Area. Joe.

0: Salve, sto Giano Orcarreo. Leken. Coi pias paschiedia.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा अगर बच्चे को देवर पुरुषार्थी be

del Quito a Elena. Rosa Bradwelle. Apaneco. Papito a Raquel.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नजारे दिखाए थे कि अंतम समय है, जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएंगी, खराब वृत्तियां भी तो सहारा देने की वृत्तियां भी। तो बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था तो कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उनों को लाइट ही दिखाई देती है, मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट दिखाई देती, फरिश्ता रूप दिखाई देता। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते हुए भी आप ऐसे सामने बैठे हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा, लाइट लाइट ही दिखाई देंगे। ऐसे हो

said, son.

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, समझ जाएगा

ऐसा दिखाई देगा।

खुश

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अंतकाल, जय जवान है, जय बूढ़ा है, जय तंदुरुस्त है, जय बीमार, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास साखी बनकर अटेंशन दो, चाहे कितने भी प्राकृत आत्माएं आपताएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरी पन की स्टेज आपको सहज स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मध्य फरिश्ता सो देवता निश्चित बाप समान बनना है। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते बात करते कारोबार करते अनुभव किया, जैसे साकार में कार्य कर रही हो, अच्छा।

जब संकल्प भी है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं रोब क्यों किया, कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहते हैं अगर आप भी होते ना।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ, क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे होना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करे वो करे, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यार। तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

choc.

चिक।

So

सीजन जमा की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राजभाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राजभाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबर वार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं।

0: 家。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

cosa da

say. Fiera Sangalabo. Say Crodo. Chota chota Crod me. जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए ना, ऐसे पसंद सभा होगी। दादिया पसंद

0: स्वभाव ना से टोकरे के रूप से नहीं पूछना। स्वभाव ना से एक दो की सहयोगी बन, एक दो को
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: होली मनाएंगे होली। अच्छा जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है तो दृढ़ संकल्प करेंगे। अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से आप नहीं उठा रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Percentage yoga kiss.

想。

0: isso mesmo, como é a ti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए

सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। क्लीन और क्लियर रहता है, इसलिए बाप दादा को डबल फारे नर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन ये डबल फारे नर्स ये अपने विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सच्चाई।

सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

So.

करता रहता हूं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

संभाल के रख।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के समय

cansado. Shanti.

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। पूर्वज भी विशेष सेवा

Jam 11 mit Theo. Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Peace.

सभी का अटेंशन, मैं जा रही हूँ।

0: anger to your practice. Bahut bahut avashyak lage. Isliye apne samay par maan. Asha
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने समय के परमान आज ये भी कहा कि सहयोगी है, लेकिन अब यज्ञ नहीं। क्वालिटी बनाओ, जो भी हम सहयोगी है वो रोको, अपने जोन में। बाप दादा ने पहले भी कहा है, लिस्ट तो आई संपर्क में लाओ, रहे मीटिंग करे और आगे के प्रोग्राम बनाए, तो हर जोन जहां भी उनके है सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहां भी जोन में हो सहयोगियों को भी आगे बढ़ने का फिति सुनानी पड़ेगी। तो सभी जोन मिलके एक एक वर्ग का जहां विशेष स्थान है संगठन में कितने आते हैं, क्या आगे जाते। ऐसे संपर्क में लाएंगे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yeah.

0: chico, su amante y panadero, y que su amargo ya carte cushime orteo tu suame pi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।